암세에는 도나 도야디다네야데 야수와 이야미 기 이레리안에 도나우와 야수와 오메드하니 하디 익티에 도나우와 오메드한 우다이미 칼마우와 엠바테오 엠발입디아네야 와왓 에아니 돌 쿠리아티아야 오버 뜨쿠얀 펠루깟 엠닛 오버 오더로라우 베티 카퍼나훔 오킥 이디프나 바레 하와 다이키 야수아 아레 바레 마시 다이아 케하이 윈넷 아크라 바람 에아이 에암 에르기스 이쿠리아티아이 아이 타레 아사구르 킬로미트라 이시그노브 야수아 이아미키 히레레 Tufalluka dule riani dor irquin. Lakin Yasua bareo dai baraquina. Una nebuide. Bara baro Tufalluka reusti hareuna. Tufalluka are ulla bara ibine bodor tiktim. Toin tumalia iamidar. Urawib, higit uday fallukat, gat bentoy, tiyet tona riyan. Yasu are, kuryatya igib, tu falluka, amabikayet tona uwa. Lakin bara, odhuna, gigiyanet tona uwa, riyan. Malyabem wangkwana, yamidayt, hari uday, Ihadi hoi tamiyani, omini darak, fallukat, gwadit, tivariasi yeyan. Udhai yasu abentoi, bihayet tona riyan. Kuryatya ehan, raav kiki. Malia balitti falluka, yamnit, bario harawai, kafarnahum ibin. Baro yamidar urawib imrinub ratiana sedna nob toy tiktima idin. Yasua igubi osdik andihokna. Barakna aneb haytharuneb usabab mojizat ritanet tunati kiki. Lakin ihadi gaptaneb okik. Tamtani sabbi aneb tharuna. Amak mariti dhai basha gaman. Lakin tumari umidhan udaim tini utokna batyo dhai shagaman. Ukwasana ubaba gabbalamtit talamato adami oriki dasa abuit. Tum batu Are, tumare baru iahokna indiet tikati edi. Malia udai baro ratiana. Ukwasana harriwet tona nide dhai ibaki nan nide tona tu idin. Yasua igubi ukwasana harriwet tuna baktefi baru. Dhokna ifdigeb ongal amanana idi. Aflay bara baro ratiana. Shibibtit amannay jillay. Aflay baruk naat mojiza ikwasi tindiya. Naan ida tindiya. Hinin hoban umingayib mannaab tamiyan. Uktab diyab ikatiyet baru. Tibirete bare marit tamineti indi idin. Yasua bare odhai osdik andi okna. Tibirete barekna yadi hiyab musab kiki. Lakin tibirete usitki hadi barekna iniu babu ikati. Ukasana yadi ikati. Beb tibirete ati it
दुनिया मीठा नहीं नहीं हो इधे उधे सेद नशाव तेन यहाँ इधी माप ही आहोन इधीन यसु अबरे सोया आने उमिठाने हाडे आकाते बालीन आने बेति एन दोरन इथेरुक पी दीन बालीन आने आमने दोरन इत्ती उकी दीन लाकिन आने सोयने तोकना तोनाती बराक रिताने मसे आमना कित्तेन बाबू इनिवे तू तूना कस्तु यह तिंदि आने बेति ईनीपका अरे दोरहन फिदना गीक्सिकाद आने तिब्रेते यानी हो आने अहर्रीवे तोनाति शक्ति धाई आप काके लाकिन आने दीगत्या हर्रीवे तोना अतंकी की जिल्ला याव आने दीगता होसु हर्रीवे तोना अरे बरू हियायो इकत्ये कस्से गालन बाकुटसे तोनात लाकिन आखराते इ बरे अस्ते यक्षे अंदे बाबु हर्रीवे तोना और शिविप्तित बरो आमनीनिपका उमिधन उदायम इमारिंदे आखराते भी अरे बरो अस्ति अक्षे अंदे इदे यसुआ यहडे तिब्रेते नति एयान अनेबु दिया अबुत यहूदि यसुई अश्कीमियान बरा बरु यसुआ यूसिफ और की केहन उबाबा हुआ तोंदे हुआ निकतेनियक अफलाय बरु तिब्रेते नति यन का गिंदे दीन यसु आयुगुबे तक तक धाय अश्कीमते सिंगदना बाबु आने दीगोत्या इंसी को नून गालहन आने बेते आय का अधगिरिया बरो अरे आखराते बे अस्ते यक्षे अंदे तुम बतू इन अभियाय किताबे कताब तू बरे कसे उकासना अल्लाह में इंदे दियाब उबाबा सिनाक्रित बरीसो अल्लाह मामीनी का अनी धाई ईने उकासना इकती बेब नून गालन उबाबा राव की के बरू उबाग उबाबा राव ओस्ते गंदे होकना आमनी नीप का उमिधन उदाय में मारिंदे अने उमिधने हडे अकते होवाकना उमिंगाई मन्ना अवतमियान लाकिन इयान लाकिन हडी तिब्रेते नाति एन तो एफेन एम बरे तमीनी ऊतक ई कीदी तिब्रेते या भ्याडी इढ़नी अनेबु एन हडिये तमीनी का दीमाप मिढ़ने मारिंदे आनि हडि अनि उबाशारो अरे बरो अनि तु दुनियाति मिढ़ने जिल्लाय या वंदेदे मलिया यहूदी उन्ने तक तक इंगवससारनीत ऊनू तक तमनाय जिल्लाय उबाशारो कग इनी होन इदीन यसु अबरेओ धाय ओसदि गंदे होकना आदमी ओरि बशर तमीत उबोयो कोई बिद्दीने अबियाकना मिढ़ने मार किद्दीन बलीन अनि बुबाशर तमेनुआ अनि बोबोय गुएनुआ उमिढ़न उदायम
imar iedna. Aharati bi are ani bare asti aksi andi. Ani bubashar sitki itmari itu. Ani buboy are sitki gwastibu. Ani bubashar tamenua. Ani buboy gwenua. Balin ani ikwerna. Anihan bareo akwarri. Ubaba udhani digwatiahe. Anihan bareo sabbi akwarri. On taanet ane taminibka han bak ani sabbi ikwarindi. Anihadi tibirete tikwaba. Hovakna mannaap tamianit iana. Lakin en ihadi taminipka dimap ikwar indi idi. Yasua en ibhali hadidiano baru Yahudi dini gawib kafarnahumi allami. Guida ikuriyatya yeso baro en diye imasuna. Un akra alimu au baro gabbalamini idin. Yasua ikuriyatiaya en ibhaye ashkimine tona iktin. Aflay baru bareo dhai ambara gallabe noknahan. Padame or sur hoy ifie omin okik rewe ritenek are ashuk midhaniyaun odhai tat na thankite ibhale anidhokna hadidane shugikatin are midhanikatin masibare sokna gwadi amanav kikenede yasua bali amanav bakai wanka iktin baro itil eadhan iktin. Malia Yasu amasi ubaba adgirisab bikae botak nun galhan ane beti ini kihai. Hai adie usabab are baku idi. Benu dori guida kuriata eso fidnab agarna. Are shauti baro aram kikin. Yasua itamnamalu ratia barakan gigi kiddina bakkike edi. Simon Bitrus bario dhai igubi. Onkwanai abnebi. Baruk umidhan udaimi bhali tibariya. Onta amanna are baruk ukwasanai ab ongal umugaddas tikatye tona nikan idi. Malia Yasua yugubi barek itamnamalu wasayokna kakehan. Lakin baresokna gal oblisu idi. Yasua tulie Yahuda Simon uiskariuti oru. Baru itamnamaloye galu. Malia Yasua itila itnuniabu. Tutimasuni shalla oge roitimerna are sakanawa sualwa nat rata tiednetti barinek an on wasai edne nai umbario sakana samana hon an shalla kasto hinin heruetua barak tarunetua hoitimerna.